बड़ी नम नम बड़ी नम नम बड़ी नम बड़ी नम Having a pretty num-num. Is waiting for one num-num.